0: En du delle ne go so hiwi ferdinand den he go da hiwi ikuste di delle ne in du falle go go kate le ku hani di ayi go go kate
1: e noi ki si di kan ko den ke e nen kan ta go to no la ko di ni chede de ne dai chi de di ke ni kan ni aha kan ni ni go ka ku den de den ke den te ko la gi di
0: oh
1: ni na ni ki ni wet da ये ये लाइन वाला सिखन तकनी तते चिने तने के गासी के बाद जिरा सिखन तागु तागु ते इनने सिखन तागु तते चिने ये तने खोए को लखने हां कने कने त देने के इनने ने के दी
0: हां
1: ते कने ने को आने से के दिया
0: ओ त ई खाहोने थाने खने इमरजेंसी गा खने देने के के हे मीटिंग ने के तिने
1: हला सिख रा दिने दे के दिया निमन ला दि के गचना देने बेरे के कच्ची तंदरी चले लेंटो तंदरी को था तंदरी के कहने के लिए लेकिन का कोई कुछ नहीं था हाँ हाँ कहने
0: नहीं ये अकेले को कहते क्या यूने अकेले ने सो को किंतु नहीं यूने
1: हाँ कहने जगी था कहने सीख लेकिन किधर कहने जा
0: ये इमरजेंसी की दी दे या यूने लातने के कुन ताजा का को करे लेकिन दे कहने को लगा की दी
1: हाँ कहने नहीं いいぐらい。ね、ちょっとね、ちょっとね、結構ですね。やっぱりちょっと大変で、これがね、できるんてことでね。で、これはね、ね、変なのだ。で、なんか、まあ、ロエスとかにんでぐらい、ホテルに行くね。とけぐらいね。すごい、かぐちゃだ。うん。やんなきゃいけないぐらい、俺、何でてクイムがぐらい、これでこっちにね、これ、フォンかけてぎるな。寂しいけど、ちょっとな。なんか、寂しいね、ふうにですね、てこと。って。
0: え、だってね、カニってもらえ、え、わけ、これカニにこう切れカニで、でね、せ、ごさ、たて、カニこう、こう、は、はてがとれ。カニがこってじゃ、カニでてね、せ、こっち、こう、すんだぞ。ね、あ、だけどね、へ、とんてんなにかくいくわけで、ウィンでだかね。あ。カニね、こってじ。だから、カニだけで。え、だってて、え、てれね、え、ちゅう、カニ、ちゅうぱい、カニはよね、てね、けそんえ、て、こってやよね。
1: カニでなぜかというか、ビジネスなわれ。で、カウピグレ、カニグレ、シーウォッシャーで、自宅コーラ、ピクテテニグレ、ウィンドナゾ、カニアニグティジ。で、カニでこなぜかというか、カニグレ、シーウォッシャーで、自宅コーラ、ピクテテニグレ、ウィンドナゾ、カニアニグティジ。で、カニでこなぜかというか、カニグレ、シーウォッシャーで、自宅コーラ、ピクテテニグレ、ウィンドナゾ、カニアニグティジ。で、カニでこなぜかというか、カニグレ、シーウォッシャーで、自宅コーラ、ピクテテニグレ、ウィンドナゾ、カニアニグティジ。で、カニでこなぜかというか、カニグレ、シーウォッシャーで、自宅コーラ、ピクテテニグレ、ウィンドナゾ、カニアニグティジ。で、カニでこなぜかというか、カニグレ、シーウォッシャーで、自宅コ
0: Massi.